58 पैसा, बिक्री दर 22 रुपया 67 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरीदर 40 रुपया 74 पैसा, बिक्री दर 40 रुपया 90 पैसा। कटारी रियाल 1 को खरीदर 41 रुपया 95 पैसा, बिक्री दर 42 रुपया 12 पैसा। थाई भाट 1 को खरीदर 4 रुपया 69 पैसा, बिक्री दर 4 रुपया 71 पैसा। यूएई डिरहाम 1 को खरीदर 41 रुपया 65 पैसा, बिक्री दर 41 रुपया 81 पैसा। मलेशियन रिंगित 1 को खरीदर 38 रुपया 12 पैसा, बिक्री दर 38 रुपया 27 पैसा। साउथ कोरियन 1 100 को खरीदर 9 रुपया 98 पैसा, बिक्री दर 10 रुपया 2 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरीदर 16 रुपया 38 पैसा, बिक्री दर 16 रुपया 45 पैसा। डाइनिस क्रोनर 1 को खरीदर 23 रुपया 82 पैसा, बिक्री दर 23 रुपया 92 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरीदर 19 रुपया 52 पैसा, बिक्री दर 19 रुपया 60 पैसा। कुवेती डिनार 1 को खरीदर 498 रुपया 32 पैसा, बिक्री दर 500 रुपया 28 पैसा। बारेन डिनार 1 को खरीदर 405 रुपया 65 पैसा, बिक्री दर 407 रुपया 24 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरीदर 397 रुपया 29 पैसा, बिक्री दर 398 रुपया 85 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब हामी गीत सुन्छौँ द येलो ह्यामरको तिमी नभए।